लाल की जय। राइट वेयर वी स्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, हरि ओम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। इट इज नेम्स ऑफ गीता माता। ओम गीता गंगा च गायत्री सीता सत्य सरस्वती।

ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे डर भी उसे धरा रे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Has your name in his heart, has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

0: गुलाबी फूल।
1: हम कहा इका दे तो हम कहा फूल का दे तो फूल।
0: हाथ जोड़ कर फिर वो बोल।

जगत में सब सहारे छूट गए, अब सिर्फ तेरा ही दर बचा है। मेरे आंसू, मेरी पीड़ा सब तुझसे कहने आया हूं, कृपा कर प्रभु, कृपा कर।

ये पवित्र जल ही गंगा है, इसके सिवा और कोई गंगा नहीं। तथैव तुम स्वयं ईश्वर के स्वरूप हो, अर्थात तुम स्वयं ईश्वर, तत् त्वम् असि। आवाज कभी नहीं मरती। उस खाली खिड़की की तरफ देखो, अब आंखें बंद करो और मन की आंखों से देखो उस खिड़की के अंदर।

0: ये तो बीज है बाबा।
1: ये नन्ना सा बीज ईश्वर और संसार के बीच की कड़ी है। इसमें एक संभावित जीवन है। इससे थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा प्रेम मिल जाए तो ये नन्ना सा बीज एक विशाल वृक्ष बन सकता है, जो फल फूल और छाया देगा एक आदर्श व्यक्ति के जीवन की तरह। लेकिन अगर इसे तोड़ के देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा।

गणपति गणेश भगवान की जय। सजो हम लोग को कर दिया आरती लगे सौस्तान ऐसी गाड़ी भगवान। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात्।

सबका सबक बैठे मे ऑल टेक सीट्स माय डियर फ्रेंड्स. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. एक बार बोलो श्री वृंदावन बिहारे लाल की जय. सबको सीताराम एवरीवन. Jai Sita Ram, and a warm welcome, of course, this evening to each and every one of you. On behalf of